0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Brick veut vous donner un gros coup de main pour votre déménagement avec le Grand Solde. Économisez jusqu'à 33% de rabais sur les sofas et les sofas sectionnels. Jusqu'à 20% de rabais sur les meubles de chambre à coucher et de salle à manger. Jusqu'à 40% de rabais sur les matelas sélectionnés. Et modernisez votre cuisine. Obtenez jusqu'à 15% de rabais sur les gros électroménagers sélectionnés lorsque vous en achetez 3 ou plus. Plus, vous pourriez gagner l'un des 4 articles de la collection Shaq et O'Neill Home. Aucun achat requis. Certaines exclusions s'appliquent. Détails en magasin. Déménagez et économisez gros chez Brick. Plus d'économies pour vous.
2: हर चीज को हर सिचुएशन को देखने का हर एक का अपना नजरिया है अब एक अमीर बाप ने अपने बेटे को भेजा एक गांव में ये जानने को ये देखने को कि लोग गरीबी में कैसे जीते हैं कैसे रहते हैं एक दिन बिताकर जब बेटा वापस आया तो डैड ने ट्रिप के बारे में पूछा पता है आंसर क्या था कि डैड मैंने देखा कि हमारे पास एक डॉग है और उन लोगों के पास चार हमारे पास एक फाउंटेन है गार्डन के सेंटर में और उन लोगों के घर के पास से झरना बहता है हम लोगों के पास इंपोर्टेड लाइट्स हैं गार्डन में उन लोगों के पास बहुत सारे तारे हैं उस बेटे की आखिरी बात एक्चुअली लेफ्ट हिज डैड स्पीचलेस गेस व्हाट ही सेड इन द एंड ही सेड थैंक्स डैड फॉर शोइंग मी हाउ पुअर वी आर

आऊँ तेरे रूबरू एक दिन, तेरे ही किसी अजीज की सिफारिश लेकर। मेरी तो तू नहीं सुनेगा मुझे पता है, वही आएंगे मेरे साथ मेरी गुजारिश लेकर।

0: ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
3: मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि हम लोग एक्सप्रेस करने में थोड़ी कंजूसी कर जाते हैं। पता नहीं हेजिटेशन है या कुछ और, बट जो भी है गलत है। क्यों नहीं हम खुलकर बोल सकते अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने पेरेंट्स को कि वो हमारे लिए बहुत प्रेशियस हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत खास हैं। पता है कई बार वक्त हाथ से फिसल जाता है और पीछे छोड़ जाता है बहुत सारा रिग्रेट। इसलिए सारी घबराहट, सारी हेजिटेशन छोड़कर उन लोगों को थैंक यू बोले जिनकी वजह से आपकी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल है, और फिर देखें सामने वाले तो खुश हो गए ही, आप कितना ब्यूटीफुल और अच्छा फील करेंगे।

एक रिनाउंड म्यूजिशियन एक वायलिनिस्ट से किसी ने पूछा कि आप कितना अच्छा वायलिन बजाते हैं, कितने लकी हैं ना आप, तो आंसर पता क्या आया कि ये लक नहीं प्रैक्टिस है, क्योंकि अगर मैं एक महीना प्रैक्टिस नहीं करता तो ऑडियंस डिफरेंस बता सकती है, अगर मैं एक हफ्ता प्रैक्टिस नहीं करता तो यकीन माने मेरी बीवी फर्क बता देती है, और अगर एक दिन मैं कहीं प्रैक्टिस नहीं करता देन आई माई सेल्फ कैन टेल द डिफरेंस। सो इसलिए कहते हैं कि आसानी से जो मिल जाए उसमें वो मजा नहीं जो मेहनत करके पाने में है। पर साथ ही साथ एक कड़वा सच ये भी है कि हमें कामयाबी मिले तो वजह मेहनत और कोई दूसरा कामयाब हो तो किस्मत। नाउ दैट्स नॉट फेयर एट ऑल।

0: ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਇਹੋ ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
3: एक बहुत ही खूबसूरत ओल्ड लेडी से किसी ने उनकी खूबसूरती का राज पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे लिप्स ब्यूटीफुल हैं क्योंकि ये सच बोलते हैं, मेरी आवाज अच्छी है क्योंकि इससे किसी के लिए कोई बुरी बात नहीं निकलती, मेरे हाथ खूबसूरत हैं क्योंकि ये दान करते हैं और मेरा दिल अच्छा है क्योंकि ये सबको प्यार करता है। नाउ दैट्स ब्यूटी इन द रियल सेंस एंड दैट्स द ब्यूटी टिप फ्रॉम माई एंड फॉर द डे।

0: कल्चर ऑफ पंजाब ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: अच्छा, जिंदगी एक ऐसा मौजू है, ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर जितनी बात कर लें कम होगी और यकीनन हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जिंदगी को और इसके किसी भी पहलू को जनरलाइज तो किया ही नहीं जा सकता। अब देखें ना, किसी के लिए तो जिंदगी खुशियों का ताजमहल है और किसी के लिए अपने हसरतों का कब्रिस्तान, किसी के लिए सुहानी सुबह है और किसी के लिए ये अंधेरी रात। कुछ को लगता है कि ये बादे सबा है और कुछ के लिए जून जुलाई की झुलसती लू। बहरहाल यहीं खत्म नहीं करेंगे, इस बात को जारी रखेंगे पर इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: कल्चर ऑफ पंजाब से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया।
1: अच्छा, अगर ये मान भी लें कि कुछ रंग हमारी किस्मत खुद बन जाते हैं, तो कहीं न कहीं एक सच ये भी है कि कुछ रंग हमें खुद चुराने पड़ते हैं, मेहनत, डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस से। चलें फिर क्यों ना आज ये वादा करें कि हम जिंदगी के सारे खूबसूरत रंग चुरा लेंगे। कामयाब ना भी हो पाए तो कोई गम नहीं, कम से कम कोशिश जरूर करेंगे। फिलहाल तो हमारी कोशिश ये है कि अच्छी बातों के साथ साथ आप तक बेहतरीन म्यूजिक भी पहुंचाया जाए आपके अपने शो कल्चर ऑफ पंजाब में, विच इज ब्रॉट टू यू बाय देव दातला।

0: ਕੁੜੀਏ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇਖੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।
1: ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
2: ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ।
3: अच्छा, आपकी सोच, आपकी पर्सनालिटी ने खुद ही बता देना है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितने पॉजिटिव हैं। मैंने देखा है कि जिन लोगों में खुद लोएस्ट सेल्फ एस्टीम है ना, दे स्टार्ट जजिंग द अदर पर्सन विद हिज पोजेशंस एंड नॉट बाय हु ही और शी एक्चुअली इज। ऐसे लोग बस यही नोट करते रहते हैं कि आप कौन सी कार ड्राइव करते हैं, कपड़े और ज्वेलरी कैसे डालते हैं, कितने बड़े मकान में रहते हो। डिजाइनर लेबल्स इनके लिए स्टेटस सिंबल हैं, और एक्चुअली मैं तो ये फील करती हूँ कि इनसे अगर ये सब चीजें ले लें तो दे विल डाई ऑफ शेम, और वो इसलिए क्योंकि इनकी जिंदगी घूमती ही सारी इन मटीरियलिस्टिक चीजों के इर्द गिर्द है।

0: You're listening to Culture of Punjab. We are changing Canada one person at a time.
1: अच्छा एक बार ये सोचकर बताएं कि ज्यादा बेटर फीलिंग क्या है कि लोग ये याद रखें कि आपकी पहनी हुई ज्वेलरी बहुत महंगी थी, आपके आउटफिट्स बेहद कीमती हैं और आप बड़े बड़े डिजाइनर्स महंगे डिजाइनर्स की क्रिएटिविटी का नतीजा पहने हुए, या फिर ये कि आप खुद एज एन इंडिविजुअल बहुत कॉन्फिडेंट बेहद ग्रेसफुल हैं और लोगों की नजर चाह कर भी आपकी ड्रेस या ज्वेलरी पर ना जाकर आप पर टिकी रहती है। How very smartly dressed. मेरे ख्याल से इस कॉम्प्लीमेंट से तो बेटर कॉम्प्लीमेंट ये है कि how very confident and intelligent.